छोड़या आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी अजंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़या संजोगी मेल।

रहै प्यासा, तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं, यो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है, आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास नी वरिया, हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करिया हो रच्छा, राख ले हो मुहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बाल दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बबतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा,

ताहे हमारा जावन काल सब जगत बनायो देव दया जच्छन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझी हो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सगल प्रजा जिने आप सुवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पाल मोह बाधे कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचरे अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पीर पछान कट कट के पढ़ पढ़ की जान जब दुकारख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह पारा जब आ करख कर तो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बदन सृष्ट सब तार आपे अपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरहंकार निरिबका निरलंब आद अनिल अनाद संब ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताकाओ कर पाहन अनुमानत महामूढ़ काश भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चिन्हित नह भेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाय पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही पूपा अंडज देरज सेत दिकीनी उत्पुज खान बाहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट भयो संकरी कैठा सिगरी सृष्ट दिखाय चम पाव आद जुगाद स्वरूप स्वयं पाव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो दुष्ट जिते उड़व उत्पाता सकल मलेच करो रण काता जे आस तुझ तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुख होवै मरे पुरख जामन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे।

दुष्ट अरे सटारायण तत्काला कृपा दृष्टतन जाहे निहरि हो ताके ताप तनक मह हरि हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह शुआ सक न कोई एक बार जिन तुम्हें सुभारा काल फांसते ताहि उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दार्द दुष्ट दोख ते रहा खड़के त मैं शरण तिहारी आप हाथ दे लिहो उबारी सर्ब ठौर मोहो हो सहाई दुष्ट दोख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता किल बिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता श्री हस्तोज जा पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बाशत फल पावे सोई दुख न तसै व्यापत कोई अड़िल सुनै गुंग जो आहे सो रसना पावाई सुनै मूड़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द भाव निकटना तेरे नर के रह हो जो याकी एक बार चाओ पई को कह चाओ पई संबत सत्रह है सहस पणिज अर्ध सहस पुण तीन कहिज भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र उपख्याने रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे चार सौ पांच चरित्र समापत मस्त सब मास आप जू दोहरा दास जान कर दास पार कीजै कृपा अपार आप हाथ दया राख मोहे मन कराम बचन बिचार चाओ पई मैं ना गणेशा हे प्रथम मनाऊ किसन बेसन कब हू न त्याऊ कान सुने पहचान न तनसो लिव लागी मोरी पाग इनसो महाकाल रखवार हमारो महालोह मैं किंकर तार अपना जान करो रखवार बाहे गहे की लाज विचार अपना जान बुझा प्रत परिया जुन चुन सत्र हमारे मरिया देग तेग जग मैं दो चल राखे आप मुह और नांद लै तुम माम कर हो सदा प्रतपारा तुम साहेब मैं दास तिहारा जान अपना

माहे दोहरा। जब आए इस प्रभ को भयो जन्म तरा जग आए। अब मैं कथा संक्षेपते सब हूँ कहत सुनाए। कब बाच दोहरा ठाड़ पहो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याए। पंथ चला तब जगत मैं जब तुम करो सहाय। दोहरा जे जे तुमरे त्यान को नित उठते हैं संत। अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत। दोहरा काल पुरुष की देह मो कोटक बिसन महेश। कोट इंद्र ब्रह्मा के ते रावण सास करोर जलेश। दोहरा राम कथा जुग जुग या टल सब कोई पाखक नेत। सुरग वा सुरग बुर करा सगरी पुरी समेत चाओ पई। जो एह कथा सुन अरगावै दुख पाप तेह निकट न आवै। बिसन भगत की ए फल होई आद ब्याद स्वै सकै न कोई। सम्मत सत्रह है सास पचावन हाड़ बदी प्रथम सुख दावन। तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा पुहुल परी लहले हो सुधारा। दोहरा नेत्र तुंग के चरण तार स्तद्रव तीर्थ रंग श्री भगवत पूर्ण कियो रागबर कथा प्रसंग। दोहरा साध असाध जानो नहीं वाद सुबाद बेबाद। ग्रंथ सकल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया।

पार पाहे। जिन कौ लगे प्यास अमृत से खाहे, कलमह एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब सहनु कृपाल संभाल साहे साहे, बिरथा कोई न जाए जे आवै तो दयाहे। श्लोक महला पंजवा। अंतर गुर आराधना जिहवा जाप, गुरनाओ नेत्री सतगुर पेकना, श्रमणी सुनना गुरनाओ सतगुर।

दंडावत बंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ डोलन ते राखह प्रभु नानक दे कर हाथ बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे

परम सम्मान योग गुरु खालसा सात संगत जी, आप संतां संध्या समय सतगुरु दे पावन पवित्र सोने दरबार दियां हाजरियां पर रहे हो। सतगुरु दी अमृतमई बाणी दा रस पिन्ना कीर्तन आप संगतां ने सरवण कीता है। हुण लड़ीवार इतिहास दी कथा दा समा है। पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज शांति दे सोमे महान परोपकारी सतगुरु दोहे था बाणी का बोहे था श्री अमृतसर साहिब जी ने कार सेवा करवा रहे हैं। बहुत सारे गुरसिख माई भाई सेवा दे विच योगदान पा रहे हैं। एक फफड़े पिंड तो सखी सरवर जिसनू लालां वाला पीर भी कहिंदे हैं, उसका उपाशक भाई बहलो वह भी गुरु महाराज के पास पुजिया है। पहला गुरु महाराज ने हुक्मनामा भेजिया पर उसनू कुछ भी पता नहीं सी, हुक्मनामा किसने भेजिया क्यों भेजिया। फिर दूसरा हुक्मनामा गया, फिर एक गुरु महाराज दे कोल आ गया ते गुरु महाराज सच्चे पातशाह ने फिर इसनू आखिया भाई श्रद्धा रखनी चाहिए है। जेड़ा मनुख श्रद्धा रखता है उनू फल की प्राप्ति हुंदी है। चाहे कोई देवी देवता होवे, गुरु पीर कोई रहबर होवे, जिस ते श्रद्धा रखिए श्रद्धा नाल सेवा करिए फिर मन की प्रसन्नता हुंदी है, फिर चंगे फल की प्राप्ति हुंदी है। हुण भाई बहलो दे नाल गुरु महाराज दे बचन बलास हो रहे हैं, वह आप संगतां सरवण करो ते एक वार प्यार दे नाल आखो।

0: लगे भाई बहलो जे तू गुरु घर ते श्रद्धा रखेगा फिर तेनू सारे फल प्राप्त हो सकते हैं।
1: बिन श्रद्धा कुछ हाथ ना आए,
0: श्रद्धा ही नहीं ते फिर सेवा भी किसी लेखे विच नहीं पै सकती ते ना ही मन की इच्छा कदी पूरी हो सकती है।
1: श्रद्धा मूल भगत तुच सारी,
0: ज्ञान रूपी बिरछ दा मुड श्रद्धा है ते जेड़ी भगती है ए मानो उस दी शैल है।
1: ज्ञान तरोवर उदय उदारी,
0: इस तू अगे ज्ञान दा वृक्ष ज्ञान दा दरख्त ओ अगे प्रफुल्लित हुंदा है।
1: फल कैवल को प्राप्त हो,
0: जेड़ा श्रद्धा भावना दे नाल सेवा करे फिर उसनो कैवल मुक्ति दा चार बैकुंठ दियां मुक्तियां मनियां हन। सलोक समीप सारूप सहयुज ते दूसरी कैवल मुक्ति इन्हां तों वक्खरी है जिस नूं अभेद मुक्ति भी कहा जाता है। उहदा स्वरूप यह है ज्यों जल मह जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, जिवें पानी विच पानी रल जाता कदी वख नहीं हुंदा इसे तरह वाहिगुरु दे विच अभेद हो जाईदा है।
1: जिस ते संकट होए ना कोई,
0: फिर जदों केवल मुक्ति प्राप्त हो जांदी फिर कोई किसे किस्म दा जन्म मरण दा दुख ओ नहीं व्यापत हो सकदा।
1: शरदा बिन सब निष्फल कर्म,
0: लो शरदा तो बिना असी जो भी कोई कर्म धर्म करदे आ ओ व्यर्थ हो जांदा।

0: सब कुछ हो जाता है, और जो सब कुछ होने की कोशिश करता है कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। एक हकीकत है, एक बहुत सच्चाई है, सब कुछ होने दे च, सब कुछ हो जावा उस दे च मनुख जितनी मेहनत करता है, यतन करता है, उदा सवा भाग भी मनुख इस दे च नहीं लांदा कि मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। और वाकई जिस दिन ये ना कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। बीज ना कुछ होके एक दिन फल बन जाता है, दरख्त बन जाता है, पर पहले ही तो मिटता है, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। तो मैर्ज करा एक बाहर दी यात्रा है, एक अंदर दी यात्रा है, एक अहंकार दी यात्रा है, एक निरंकार दी यात्रा है। इन मैं पूर्ण तौर पर धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी दे चों खोलना सी, पर समा अपने ढंग नाल जो है चला गया। दो मिनट मैं आप जी दे होर लवा। अंदर दी यात्रा नो ही ध्यान साधना कहिंदे, ध्यान दा अंदर जाना, ध्यान दा बाहर जाना, बाहर दी यात्रा। बाहर मनुख उदों दुखी हो जांदा जद उस तों कोई अग्गे है, उस तों कोई अग्गे है, किसी चीज दे च भी अग्गे होवे, प्रभुता च अगे, धन दे च अगे, शक्ति दे च अगे, कला दे च अगे, गुणा दे च अगे, रूप रंग दे च अगे, किसी चीज दे च ही अगे दुखी हो जाएगा। तो सारी दुनिया च मनुखां नूं बहुता दुख इस गल दा हुंदा है, ए अगे कहां है। अपने ही दुख मनुख दे बथेरे हुंदे ने, पर एक दुख होर सहेड़ लैंदा है, ए अगे कहां है। इस नूं पराई तात कहिंदे ने, महाराज ने जिक्र कीता है, जिस दे अंदर तात पराई होवे तिस दा कदे ना होवे भला। पराई तात लई फिरदा, ए अगे कहां है। अंदर दी यात्रा जद कोई अगे आउंदा है तो खुश हो जांदा है, उहदे कदमां विच बैठ के प्रसन्न होंदा है। हर के संत बताओ मार्ग, हों पीछे लाग चली, पीछे चलण विच खुशी होंदी उस, उत्थे ना कुछ होण विच उहनूं खुशी मिलदी है। जद कोई अगे जा रहे आउंदा है उहदी उमंग वध जांदी है, तरंग वध जांदी है, सिर्फ मैं ही प्रभु दे मार्ग ते नहीं चलिया, कोई होर भी चलिया और बहुत अगे लंघ गया, बहुत अगे लंघ गया, उहनूं खुशी मिलदी है। बाहर दी यात्रा जो अगे लंघ है जैलसी आउंदी है, ईर्षा आउंदी है, तात आउंदी है, पर अंदर दी यात्रा जब कोई अगे लंघ जाए खुशी आउंदी है। और अंदर दी यात्रा जिस दिन मनुख ना कुछ हो जाता है उस दिन परमात्मा हो जाता है। इसका जो पूर्ण खुलासा धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ने बयान किया है, किसी वक्त सतगुरु ने फिर नदी नाव संजोगी मेले कराए ते खोलांगे अज इतनी सेवा परवान करनी, साहेब रहमत करन थोड़े ध्यान नू अंतरमुखी ले जान। यात्रा अंदर दी होवे, और अंदर दी यात्रा विच जिहड़े गुण पनपदे ने उह कागजी फुल नहीं आउंदे, प्लास्टिक दे फुल नहीं आउंदे, असली फुल आउंदे ने। उहनां विच जिंद जान आउंदी है, उहनां दी बकायदा बुनियाद आउंदी है, और उह ऐसे गुण आउंदे ने जिन्हां दे उत्ते परमात्मा सदके जांदा है, परमात्मा गलवकड़ी च लैंदा है। इस वास्ते भगत परमात्मा नूं प्यारे ने, भगत सब तो नेड़े ने, सतगुर सारिआं नूं भगती दा तोहफा, भगती दा इह महान दान झोली विच पावे तां कि साडा जीवन धन धन हो जाए। मैं फिर अर्ज करां, सुन के भरोसा बणदा है, पर भरोसा साडा कोई तोड़ सकदा है। निकी निकी गल ते भरोसे टूट जांदे ने।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gerdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gerdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GerdaleBaudGroup.com.

0: प्रताप रूप निर्भो निर्वैर अकाल मूरत जो काल कृपा कराए। सम्मान योग गुरु रूप साथ संगति हो फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी ने अकाल पुरख दे दो रूप मने ने निर्गुण सरगुण। निर्गुण आप सरगुण भी ओही कलाधार जिन सगली मोही। निर्गुण रूप रिच ओ सूक्ष्म है अदृश्य है, सरगुण रूप रिच ओ दृश्यमान है। मकान दिखाई देंदा है बुनियाद नहीं दिखाई देंदी। दरखत दिखाई देंदा है जड़ा नहीं दिखाई देंदिया। शरीर दिखाई देंदा है आत्मा नहीं दिखाई देंदी। संसार दिखाई देंदा है निरंकार नहीं दिखाई देंदा। इसनों इंज बयान करिए जो मकान का गुप्त हिस्सा है वो बुनियाद है, जो बुनियाद का प्रगट हिस्सा है वो मकान है। जो दरख्त का गुप्त हिस्सा है वो उस दियां जड़ां ने, और जो जड़ां का प्रगट हिस्सा है वो दरख्त है। जो शरीर का गुप्त हिस्सा है वो आत्मा है, और जो आत्मा का प्रगट हिस्सा है वो शरीर है। जो संसार का गुप्त हिस्सा है वो निरंकार है, ते जो निरंकार का प्रगट हिस्सा है वो संसार है। ये जो प्रगट है ये उस अदृश्य का, उस अरूप का, उस गुप्त का खेल है, तमाशा है। जैसे सागर विच लहरां बन रही ने मिट रही ने, बन रही ने मिट रही ने, पर इन्हां लहरां का पैदा होना इन्हां लहरां का मिटना सब कुछ सागर विच है। जन्म मरण सुख दुख उत्पत्ति परल सब परमात्मा दे विच हो रही है, सब ईश्वर दे विच हो रही है। ईश्वर नूं खोजना नहीं है, खोजना उसनूं पैंदा है जो गुम हो गया है। ईश्वर दे कोल जाना भी नहीं है, जाना उस दे कोल पैंदा है जिहड़ा अपने तो दूर हो गया। ना उस दे कोल जाना है ना उसनूं लभना है, सिर्फ जागना है, सुचेत होना है, सावधान होना है। परमात्मा ते जाहर जहूर है, ते हाजर हजूर है। रविदास कहिंदे ने ये हथ भी जितना तन तो दूर जा सकता है वो ते इतना भी दूर नहीं। कहे रविदास हाथ पे नेरे सहजे होए सोई। जप जप के सिर्फ इतना ही पता चलता है कि ओ मेरे कोल सी, कि मैं उसकी तलाश करता रहा, खोज करता रहा। दरअसल खोज करना की है अपने आप नु जगाना। धन सोती फिर सद जागन का, मनुख की जीवन चेतना सुती हुई है, पूर्ण तौर पर जागी हुई नहीं है। इंज कहते असी अधे जागे हुए, पूर्ण जागे हुए नहीं। संसार दिखाई देता है निरंकार नहीं। भोजन का रस आ भजन का नहीं। वाहगुरु वाहगुरु करते हैं किसनों रस आ नहीं, पर भोजन की बुरकी पाई है तो रस आ है। रसना अधी जागी हुई है अधी सुती हुई। अखा अधिया जागिया ने अधिया सुतिया हुई ने, संसार नू वेख रही ने निरंकार नू नहीं। कन अधे जागे ने अधे सुते ने, ये जगत नू सुन रहे ने, गुरु नू नहीं सुनते ना परमात्मा नू सुनते। ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦਾ ਵੀ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਰਸਨਾ ਗੀਤੀ ਬੋਲਤ ਰਾਮ, ਉਹ ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜੈਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਪ ਕਰਕੇ ਤਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਫਲ ਜਿਹਨੇ ਜਪਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਖ ਲਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਏ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਿਸਨੇ ਜਪਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਰੰਭ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਲੱਭਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਬਸ ਆਮ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਕਦੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਮਾਯੂਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਰਤਨ ਧਨ ਪਾਏ ਕੇ ਕਬੀਰਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਖੋਲ, ਨਹੀਂ ਪਟਣ ਨਹੀਂ ਪਾਰਖੂ ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮੋਲ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਲੱਭਿਆ, ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੀਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਦ ਧਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਕਦੀ ਰੱਬੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਣ ਹੈ ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਰਤਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਹਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਉ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮੰਡੀ ਦੀ, ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੀਰੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰਾਮ ਰਤਨ ਧਨ ਪਾਏ ਕੇ ਕਬੀਰਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਖੋਲ, ਨਹੀਂ ਪਟਣ। ਪਟਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਾਂ। ਹੁਣ ਹੀਰਾ ਤੇ ਜੌਹਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਗਾ ਨਾ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਿਕੇਗਾ ਨਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਹੀਰੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਦੇ। ਔਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਉਣਗੇ, ਗਾਜਰਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀਰਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਅਗੰਮੀ ਦੌਲਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਅਗੰਮੀ ਰਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੰਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, पता है मंडी की है सत्संग, हर शहर में सत्संग नहीं होगा, हर जगह सत्संग नहीं होगा, गली गली विच मंदिर है न, सत्संग किधरे किधरे, गली गली विच गुरुद्वारे ने सत्संग किधरे, सुनिया पईया ने मस्जिदां, खाली पे ने मंदिर, या किधरे एक कद पुजारी बेचारा बैठा ते घड़ियाल बजा रहे, कुछ भी नहीं, टेपां चल रही पी। हुण मशीन बंद भी करे, हुण मशीन कीर्तन करे, क्योंकि मनुख दी मशीन ते कीर्तन करना नहीं चाहिए। चलो होया घर विच बैठ के सुन लिया, पर हुण सत्संग विच भी मशीनां चल रही ने, रैराज साहब का पाठ टेप ला लो, असा दीवार का कीर्तन टेप ला लो, सुन लो। और किसी हद तक मनुख भी मशीन होंदा जा रहा है, ये सारा दिन ही टेप रिकॉर्डर के अंदर कीर्तन चलता रहे, सारी जिंदगी चलता रहे, तो टेप रिकॉर्डर ने कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाना, बस मनुख भी इस तरह का ही हो गया, ये भी मैं कर मशीन ही हो गया, मशीन की तरह की यंत्र की तरह सब कुछ हो रहा है, जागृतता नहीं है, सुचेतपना नहीं है। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, जिड़ा कम जितना कीमती होवे, अहम होवे, खास होवे, उस विच उतनी एकाग्रता चाहिए, उतनी गहराई चाहिए, उतना ध्यान चाहिए। धर्म का तो मतलब ही है ध्यान साधना, गुरु से जो ध्यान नहीं है तो जो धर्म की यात्रा शुरू नहीं होगी। कबीर कहते हैं कोई पटन ही नहीं है, कोई बाजार ही नहीं है। हिंदुस्तान के दो इतिहासक शहर ने, एक आगरा एक जयपुर, इन दो शहरों के बाजार ने उन्हों का नाम है जौहरी बाजार। आगरे का जौहरी बाजार अकबर ने बनवाया से, जयपुर का जौहरी बाजार महाराजा जय सिंह ने बनवाया से। अकबर के समय, राजा जय सिंह के समय, इन दो बाजारों में हीरिया की खरीदो फरोख का कम शुरू होया, बई सिर्फ हीरे, रतन पन्ने, लाल मूंगे, नीलम, जवाहरात, पन्ने, जौहरी बाजार। आगरे के जौहरी बाजार देखते अजकल चमड़ा ही बिकता है, या मोटा मांस बिकता है, जौहरिया की दुकाना को। जयपुर का जोड़ा जौहरी बाजार है, उत्थे हीरिया की खरीद फरोख्त होती है, उत्थे सिलसिला है। और इतना वड्डा यह देश है, हीरिया की मंडी, हीरिया का बाजार किधरे किधरे, हर थान पर नहीं, हर जगह नहीं है। हर शहर की सब्जी मंडी जरूर है, कपड़ा मार्केट है, लोहा मंडी है, लकड़ मंडी है, हर शहर में हीरिया की मंडी नहीं है, जौहरी बाजार नहीं है। कबीर कहने जिहड़ा हीरा कोल है, वेचना चाहना पर पटन नहीं है, बाजार नहीं है, जिथे गाजरां मूलियां पईयां बिकदियां ने, मैं उत्थे हीरा लैके बैठ जावां बेचण, इत्थे मूर्खता होवेगी, इत्थे मूर्खता होवेगी। हर जगह जिते सच की गल नहीं की जा सकती, परमात्मा की गल नहीं की जा सकती, इत्थे कोई स्रोता ही नहीं, कोई चाहत ही नहीं, कोई तड़प ही नहीं, उत्थे की बयान करना। तो कबीर कहिंदे ने कोई मंडी ही नहीं है, नहीं पटन। आप कहिंदे ने भ्रमण करदिया करदिया कदी कदाई मंडी मिल जाती है, पटन लग जाता है, बाजार लग जाता है। दुनिया का भ्रमण करदे करदे किसी शहर के सत्संग लग पैंदा, तो कबीर कहिंदे ने खुशी हो जाती है, मैनू मंडी लग पई। पर आप कहिंदे ने मेरी खुशी एकदम मायूसी दे बदल जाती है, क्यों? नहीं पटन, नहीं पार खो, पटन ते लब पे है, बाजार ते लब पे है, और उत्थे जड़े आमदे ने पार खो नहीं, ने हीरियां दे समझ कुछ भी नहीं। आ रहे ने मंदरां विच भगवान की कोई समझ नहीं, आ रहे ने गुरुद्वारियां विच गुरु का कोई बोध नहीं, पढ़ रहे ने नमाज मस्जिदां दे, खुदा की कोई समझ नहीं, खुदा का कोई ज्ञान नहीं। कहते पारखू ही कोई नहीं, जब पारखू कोई नहीं तो हीरा मिट्टी और की है, जब पारखू ही नहीं है तो हीरा कच है और की है। जयपुर के जौहरी बाजार एक सिंह की भी दुकान है, वो हीरे मोतियां का काम करता। किधरे एक दिन मैं जयपुर राजा पार्क के गुरुद्वारे 14 रत्ना की कथा की थी, मैनू कह लगा गहने जी ये रतन तुसी वेखे ने, नहीं विशेष रूप विच ये नौ आउंदे ने, नौ रतन, हीरा है, लाल है, पन्ना है, मूंगा है, नीलम है, जवाहर है, मोती, इस तरह की गिनती नौ बनती। मैनू कह लगे ये तुसी देखे ने, मैं नहीं सारे नहीं देखे। कहने लगे अज वक्त कढ़ो, मैं थानू दुकान पर लै जाना, अपने सारे दिखा देना, मेरे को सारे ही नहीं, असी यही काम करते हैं, साडा यही धंधा है। उसकी दुकान पर पुखराज नहीं सी, उन्हें पड़ोस की दुकान पर मंगा के मैनू दिखाया, बाकी सारे रतन दिखाए, एक एक की जो कीमत दसदा गया मैं हैरान होता गया। पूरा बाजार जौहरी बाजार है। कबीर कहते ने हीरा लेके मैं बैठ गया, कोई पारखू ही नहीं है, किसी ने समझ ही नहीं, नहीं पटन नहीं पारखू। मैं दोहरा दिया, आ रहे ने लोकी मस्जिद, खुदा की कोई समझ नहीं है, आ रहे ने लोकी गुरुद्वारे, गुरु का कोई बोध नहीं है, बड़ी भीड़ जा रही है मंदिरों में, भगवान का कोई ज्ञान नहीं, कुछ भी समझ नहीं, नहीं पठन नहीं पारखू। आप कहते ने कदी कदाई भरमन करद्या करद्या किसी बाजार में पारखू भी मिल जाते, समझ पता है सत की है, संतोख की है, दया की है, प्रेम की है, निर्वैर जज्बे की है, समदृष्टि की है, चर्चा ही हो रही है सत दी, संतोख दी, समदृष्टि दी, दया दी, निर्वैरता दी, निर्भयता दी, पर ये दैवी गुण है न की समझ कुछ भी नहीं। सूरज अपना चानना वंडदा है किरणा दे राही, परमात्मा का प्रकाश मनुख के हिरदे विच फैलदा है गुणा दे राही, और जैसे जैसे मनुख दे अंदर गुण वधदे ने वैसे वैसे रब्बी चानना वधदा है। धार्मिक मनुख दी पहचान गुणा करके, इहदे च किन्नी कु दया है, इहदे च किन्ना कु प्रेम है, इहदी दृष्टि विच कितनी समानता है, इह किन्ना कु निरवैर है, किन्ना कु निर्भय है, इन्हां दैवी गुणा दे पैमाने नाल ही नापना पैंदा है इह मनुख किन्ना कु धार्मिक है, और किस तरह नाप हो गया। चानना सारे दा सारा सूरज दा है, गुण सारे दे सारे परमात्मा दे ने, सब गुण तेरे मैं ना ही को, गुण ते सारे उस दे ने। रोशनी इत्थे गुरुद्वारा हाल दे छो रही है, पर रोशनी ते सारी सूरज दी है, गुण सारे ही परमात्मा दे ने। कबीर कहिंदे ने भरमन करद्या करद्या खुशी हो गई एक दिन कि बाजार भी लब पिया ते पारखू भी लब पिया, उनु समझ आया समदृष्टि किसनु कहिंदे, दया की है, ज्ञान की है, विज्ञान की है, निर्वैरता की है, निर्भयता की है, शील की है, संयम की है। ग्राहक सिर्फ है, आया ही नहीं बाजार विच, उनु परख भी है, समझ है। तो कबीर कहते मन खुश हो जाता, चलो पारखू मिल गए। कहते ने संगीत कोई गा रहा हो, कोई आलाप कर रहा है, ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰਾਗ ਹੈ ਕਿ। ਕੁਛ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੌਣਾ ਜਾਗਣਾ ਸਾਰਾ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਖੂ ਵੀ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ, ਕਿਉਂ? ਪਾਰਖੂ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ, ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਉਸ ਨਹੀਂ ਪਟਣ ਨਹੀਂ ਪਾਰਖੂ ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਖੂ ਤੇ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੇ ਹੈ ਗੱਲ ਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਾਹਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੜਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਪਾਰਖੂ ਵੀ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਤੜਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਪਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ 'ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਪਰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ 'ਚ ਮੰਗਦਾ। ਹਰ ਚੇ ਜ਼ੂਦ ਬਰਾਇਦ ਦੇਰ ਨਾ ਪਾਇਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੀਟੀਆਂ ਪੱਥਰੋਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹੀਰੇ 'ਤੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਸੰਖ ਅਤੇ ਸਿੱਪੀਆਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਚ ਲੱਭ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਅਤੇ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਦੇ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਖੂ ਵੀ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਵੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮੋਲ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਏ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਚਨ ਸਿਉਂ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਮਨ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਮਨ ਆਪਣੀ ਚਿਤਵਨੀ, ਇਹ ਭੇਦ ਕਰ ਦੋ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਦ ਕਰ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੈ, ਸੀਲ ਹੈ, ਸੰਜਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਵਸਤੂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਭੇਟ ਕਰ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਘਿਰਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਹੈ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨੇ। ਇਹ ਮਤ ਭੇਟ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਲੈ। ਪਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕੌਡੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੌਡੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਮਤ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਜਵਲ ਮਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ, ਪਰਿਕਸ਼ਰ ਤੇ ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ, विसारे दूजा भाव दियो, धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना चांदी अर्पण करना, ये सब कुछ इस वास्ते है ताकि एक दिन बंदे नू अपना मन अर्पण करने की इजाजत मिले। पहले पहले बच्चा पूर्णिया ते लिखदा पूर्णे पाने पैंदे, ये सब पूर्णे पाने ने, धन अर्पण करना, फुल अर्पण करने, वस्त्र अर्पण करने, अन्न अर्पण करना, ताकि एक दिन बंदे नू अपना मन अर्पण करने की इजाजत आ जाए। और जैसे मन अर्पण किया परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। रोज सत्संग विच आना, कथा कीर्तन सुनना, ये सिर्फ अपने आप नू तैयार करना है कि एक दिन असी अपनी मत भेट कर देंगे, अपना मन भेट कर देंगे। कि जिस दिन अपना मन देन नू जी करे, मत भेट करन नू जी करे, समझ लो सत्संग दा फल मिल गया, सत्संग दी सफलता प्राप्त हो गई, चौली विच पै गई। ये फल है, क्योंकि अपना मन जैसे भेट करता है मनुख, ते गुरु दी मत प्राप्त होंदी है, तो गुरु दी मत विच ही परमात्मा है। मनुख दी मत विच पदार्थ ने, मनुख दी सोचनी विच की है संसार है, पदार्थ ने, गुरु दी सोचनी विच परमात्मा है, निरंकार है। मत भेट की अपनी ले ली गुरु की मत, उस मत द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अपनी मत देते शराब पीना है, गुरु की मत दे अमृत छकना है। अपनी मत देते दोपहर न उठना है, गुरु की मत दे अमृत वेले उठना। बस जैसे गुरु की मत आई, सारे ही दैवी गुण जो है आ जाते हैं। गुरु की मत दे ही परमात्मा है, गुरु की मत दे ही सारा अनंत परिपूर्ण परमात्मा का रस है। सतगुर रहमत करन, सत्संग करद्या करद्या साडा मन तैयार होवे कि ये मन भेट कर देना है, गुरु की मत ले लेनी है, इतने शब्द प्रवान करने, सतगुर रहमत करन, बख्शिश करन, वो महान हीरा, वो महान रब्बी दौलत सानू भी प्राप्त होवे, जिसकी चर्चा, जिसका जिक्र सतगुरु की जो है बाणी विच है, सारियां दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद। महापुरखों का भी हार्दिक तौर पर धन्यवाद। ये पावन स्थान जिथे मैं देखदा वाकई छोटे छोटे बच्चों की देख रेख भी है, और बहुत सोहनी लंगर की मर्यादा भी है, संगत ते पंगत का सिलसिला है। पातशाह रहमत करन, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, बख्शिशा करन, संगत चलती रहे, पंगत चलती रहे, ताकि दुनिया दियां शरीरक लोड़ां ते अध्यात्मक लोड़ां दी पूर्ति होंदी रहे। सारिआं दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद। बोल तुक दी शवा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

श्रीमान संत बाबा कुलदीप सिंह जी झाड़ साहब वाले महापुरख पहुंचे ने। आओ एक जकारा महापुरखां दे नां दा बुलायो जी। बोले सो निहाल सतगुरु महाराज कृपा करदे। आओ महापुरखां दे नां दा इक शब्द पढ़ियो सारी संगत जी। जिन

0: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
1: So the Musiala, baby. Yeah. Mercy.

सौ साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन फॉर्मों की पेशेंस का टेस्ट मत।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: देखो कोई अरबां पति है, कोई दिहाड़ी दार है, कोई मांग के खांदा है, करम ही आखो साता है, करम ही है, कोई लख यतन कर ले फिर मसा रोटी तक रहा, कोई करोड़ा अरबां पति करमा करके किसे को 50 लाख की गड्डी, करमा करके मैनू दिल्ली वाले ने दसिया जसवीर सिंह जी ने, कहते दो दो ढाई ढाई करोड़ पांच पांच करोड़ दी भी गड्डी, करमा करके किसे को 5 करोड़ दी, किसे को 50 लाख दी, किसे को 10 लाख दी, किसे को 2.5 लाख दी, किसे को स्कूटरी है, किसे को साइकिल है, किसे को लत्ता ही नहीं है, करो भाई जैता जी गुरु तेग बहादुर जी कहते महाराज कर्मा बारे चानना पाओ। मैनू जवाब बड़ा प्रिंसीपल सुरजीत सिंह जी जरा महाराज का जवाब ले गया, महाराज कहते जैता जी जदों फुल खिड़दा खिड़न तो बाद उनू फल लगदा, फुल फल लगन तो बाद फुल झड़ जांदा, फल रहिंदा फुल झड़ जांदा ते जमीन ते डिगदा झड़क। जेड़ा फुल फल दे के झड़दा जमीन ते डिगदा पर ओदे विच्चों बीज नहीं खत्म होंदे, आखो साथ में हां।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखा दा कलेशा दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वाल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे कार औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना ता मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी, एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी
1: पूरे गुर का सुन उपदेश
0: सा ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमर हो गोबिंद
0: मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस अनित त्याग हो त्रंग
0: संत जना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करो
0: साथ संग अग्न सागर तरहो
1: हर धन के भर ले हो भंडार
0: नानक गुर पूरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साथ संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोबिंद अमृत रस पियो
1: चित चितव हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का एह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन
0: अमलीक लाल एह रतन
1: संत कमाप्त होत उदहार
0: आप त्रैलोकै निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजै
0: सुन सुन अनंत करे प्रभु गाजै
1: रखे गोपाल महांत कह माथे
0: नानक उदरे तिनकै साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आए
0: कर कृपा प्रभ आप मलाए
1: मिट गए बैर भय सब रीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सो प्रसन्न भय गुरुदेव
0: पूर्ण होई सेवक की सेव
1: आल जंजाल विकार ते रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
0: नानक नभी खेप हमारी
1: प्राप्ति उस्थित करो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुख मनि सहज गोबिंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सहोत निधान
1: सब इच्छा ताकि पूर्ण होए
0: वरदान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब दे ऊच पाए स्थान
0: और न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रित नव निध
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: सबके मत सगल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टिता
1: ए पल तिस जन कै मुख भनी
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
1: एहो निधान जपै मन कोई
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
0: समर्थ शास्त्र वेद बखानी
1: सगल मतांत केवल हर नाम
0: गोबिंद भगत कै मन विश्राम
1: कोट अपराध साध संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटे
1: जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुने लाई प्रीत
0: जन आवे हर प्रभ चीत
1: जन्म मरणता का दुख निवार
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार
1: निर्मल शोभा अमृतता की बानी
0: एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से भय भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सबसे ऊंच ताकि

गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनो बहुत वड्डे भाग श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आंदे दर्शन संगत सेवा प्राप्त होई कोटान कोट शुक्र है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आंदा जिन्होंने सुभाग

वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु।

गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

पौड़ी चते अंदर सबको विंगदरी हेठ चलाईंदा आपे देवड़ियाई आप ही कर्म कराईंदा वड़ा वड़ा वेंड में सिरे से तन धायल लाईंदा नदर पठी दे कर सुतर ना काओ कराईंदा धर्म गण पे खना पाईंदा धर्म

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है पी सच नानक होसी पी सच।

जब लो नहीं भाग ललार उदय तब लो भ्रमते फिरते बहुत हायो। कल कोर समुद्र में बूट तथे

गुरु रूप सत्संग जीओ फते प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उंज ते शरीर दा हर अंग अपने आप विच कारामद है, महान है और उसकी महिमा वर्णन नहीं कीती जा सकती। हर अंग महान है लेकिन फिर भी किसी जगह ते पहुंचना है तो पहले रास्ता दिखाई दे दे। रस्ते दा दिखाई देना बड़ा लाजमी है, फिर चलन वास्ते पैर भी होवन। विखाई देंदा है, चलन दी तौफीक नहीं, रस्ता देखे आया व्यर्थ हो गया। लेकिन मैं अर्ज करा, चलन दी तौफीक है, रस्ता ते नहीं दिखाई देंदा। ऐसा मनुख ऐसा त्यास पीता जाता है, समा जरा ज्यादा लग जाएगा, भटकदया पहुंच जाएगा। रह गई गई गल हुण अंतरीव दुनिया दी, परमात्मा नूं जिहड़ा समझना है, जानना है, इते रस्ते दा वेखना है। इस तरह दे जानकार, जानन वाले, रस्ते नूं समझन वाले, इन्हां दी तादाद बथेरी है, घट नहीं है। बड़े ज्ञानी ने इस्लामी दुनिया च भी जो कहिंदे ने खुदा ला शरीक है, ला मकान है, उहदा कोई थां टिकाणा नहीं, उहदा कोई शरीक नहीं, वह ला महदूद है, उहदी कोई सीमा नहीं। इस तरह भारत विच बौद्धी क्या, जैनी क्या, सनातनी क्या, सारे ही कहने बेअंत है, जात पात तो न्यारा है, रंग रूप

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर 1
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जां कॉल किरण @604581-1900

रस्ते के चलन वास्ते पैर चाहिए, नहीं तो चलना औखा है। और रस्ते नू वेखण वास्ते अखां चाहिदियां ने, तां वी चलना औखा है अखां तो बिना, फिर भटकना हो जांदा है, चलना नहीं आउंदा। मंजिल दिखाई देवे, रस्ता दिखाई देवे, दृष्टि चाहिदी है, लोचन चाहिए, अखां चाहिए। सिर्फ दिखाई क्यों देवे, चल सकिए, पहुंच सकिए, पैर चाहिए। जो गुरु पंथ है, जो गुरु दा मार्ग है, उससे मनुख दा ध्यान चलता है, मनुख दी सुरत चलती है। उन्हों भी अखां चाहिए, उन्हों भी पैर चाहिए। अगर अखा नहीं, रास्ता दिखाई नहीं दे रहे, मंजिल दिखाई नहीं देंदी, अगर पैर नहीं तो रस्ते नू अबूर करना औखा है, रस्ते नू तय करना औखा है, रस्ते ते चलना बड़ा औखा है। तो इस तरह धार्मिक जगत विच ज्ञान नू ते दृष्टि मन लिया गया है, नेत्र मन लिया गया, श्रद्धा नू पैर मन लिया गया, भावना नू पैर मन लिया गया। श्रद्धा ही नहीं, भावना ही नहीं, भरोसा ही नहीं, चलना औखा है, कठिन है। ज्ञान ही नहीं, समझ ही नहीं, पता ही नहीं रस्ते का, दिखाई नहीं देता, मंजिल दिखाई नहीं देती, तां भी चलना बड़ा औखा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, ऐसे अंधे दुनिया विच घटने जिन्हां नूं बाहर दे रस्ते नहीं दिखाई देंदे, सड़कां ना दिखाई देंदी, ऐसे अंधियां की तादाद बहुत थोड़ी है। और जिन्हां नूं प्रभु दा मार्ग नहीं दिखाई देंदा, ऐसे अंधियां नाल संसार भरिया पिया, ऐसे अंधियां नाल जगत भरिया। जिहड़े चल ही नहीं सकदे, ऐसे लंगड़े, ऐसे पैरां तो हीणे, मनुख जगत विच बहुत थोड़े ने, बहुत थोड़े ने, गिणती दे हिसाब नाल थोड़े ने, औसतन थोड़े ने, चल नहीं सकदे। इस तरह दे लंगड़े बहुत थोड़े ने, पर जिन्हां कोल श्रद्धा ही कोई नहीं, भावना ही कोई नहीं, भरोसा ही कोई नहीं, ऐसे लंगड़िया नाल संसार भरिया पै, भरिया पै। तो साहिब कहिंदे रोला टुंडा अंधला क्यों गल लगे, ये अंधा, ये लंगड़ा, ये टुंडा किस तरह पहुंचे परमात्मा, किवें पहुंचे। सतगुरु कहिंदे ने मैनू धार्मिक जगत विच मनुख अंगहीण दिखाई देंदे, अंगहीण दिखाई देता, अंग ही कोई नहीं, ना अखां। भाई साहब भाई गुरदास जी के इतने तक कहते हैं अंग अंगहीन। ऐसा नहीं कि एक अंग, देख बे को ना दृष्ट ना दर्श दिखाए, देखो कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाई है, देख सकिए अखां ही कोई नहीं, दृष्टि कोई नहीं। और जिहड़ी दृष्टि है, जिहड़ियां अखां हैगियां ने, संसार दिखाई देंदा है, निरंकार नहीं, पदार्थ दिखाई देंदा है, परमात्मा नहीं, परिवार दिखाई देंदा है, निरंकार नहीं। देखबे को ना दृष्ट ना दर्श दिखाए, देखो कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए, कहबे को ना सुरत ना सरवन सुनबे को, कैसे प्रिय निध गुण सुनिए सुनाइए। कुछ बोल सका, कुछ कह सका, जवानी कोई नहीं, गूंगा। हे प्रभु तेरे बोल

इच्छा नहीं कि मेरे भरा दा घर वसे ओदे बच्चे होण अगे। सची मुची ओ भैन वीर नूं मिली ते उन्हें शब्द कहे जेड़े, कहन लगे तू उदास ना होई वीर नूं क्या? कहन लगे मैं उदास नहीं हुंदा, तू चला जाएगा वीरा, पर जिन्नी देर तक मां ते मैं जिउंदियां हां तेरे घर विच सिंगां दा चुल्ला कदी बंद नहीं होवेगा। ए रोटी भी पकेगी, ए दाल भी बनेगी, ए कपड़े भी जाणगे। इथों पूले पिंड तो भाई साहब नूं लै के अगला पड़ा कीता पड़ाणा पिंड। ए वैसे अजकल पाकिस्तान विच जी, क्योंकि पूला सरहद दे उत्ते वे अजकल मैं कहा पाकिस्तान। पड़ाणे पिंड ए भी पिंड हिंदू मुसलमाना दा सी। इथे जदों नंबरदार दे कोल टिके जिहड़ी पंचायती थां जिते हुंदी, पिंड वालियां नूं पता लग गया भी भाई तारू सिंह नूं पकड़ के ले चले। याद रखियो तुसीं बंदे दा सिख दा करैक्टर देखो, अपने पिंड च बंदे दा हुंदा ही। चलो उस पिंड दे विच फिर नौजवान धर्मशाला च गुरुद्वारे इकट्ठे होए छेवी पातशाह उत्थे, उन्हां कहा इक काम करो, इह किन्ने कु बंदे ने भला जिहड़े लैण आए ने, गिनती दे ने, इन्हां सारिआं नूं खत्म करके तारू सिंह नूं आपां छड़ा लैणा। भाई तारू सिंह आपां छड़ावांगे। एक बजुर्ग भी गुरुद्वारे पहुंच गया, उन्हें कहा भाई नौजवानों तुसी जज्बात विचो, पर जिन्हू छड़ाना चाहते हो फौजी दस्ता मारना ओनू पुछते लीए। ओ बजुर्ग फिर भाई तारू सिंह दे कोल गया, बजे सन भाई साहब, कहन लगा भी सिंह जी, भाई साहब नू अदब दिता कि इथों दे नौजवाना फैसला किया भी असी फौजी दस्ता खत्म कर देंगे, तुहानू छड़ाना है जो मर्जी होवे। अगो हस के कहने सिख परोपकारी हुंदा है, मेनू कल्ले नू छड़ा लोगे कल नू सारा पिंड मार देंगे। कहने ने सी की सेवा करिए, कह लगे मैं शहीद होण चलिया, शहीदी भागा ना मिलदी, मैं शहीद होण चलिया। एक काम करियो, ए मेरे घर दा तवा बंद करना चाहते ने, तुसी तवे दी थां ते लोहा बना दिया जी। ए साडे घर दे देगे बंद करने चाहते ने, तुसी वड्डियां देगां चाड़ दिया जी। जे तुसी सिंघां दी सेवा करोगे जुझारवां दी, ए असली सेवा मेरी होवेगी। इथों भाई साहब नूं फिर लाहौर लै गए। मैं आप नूं बेनती करां जी, जखरीए दी कचहरी च पेश कीता, भाई साहब ने जाके फतेह गजाई। हुण वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सुन के तां औरंगजेब दे प्राण उड गए सन। ए फतेह आम दी नहीं, इहनूं कदी ना भुल्लियो सिंघो, फतेह गुरु गोबिंद सिंह दी है। साडा पुराना इतिहास कहिंदा है, गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सन जिहड़ा सिख नूं सिख सामने फतेह बुलाएगा उहदे वल मेरा मूंह होया करेगा। तुहानूं आपां घट्टो घट देखीए इस तरह। भाई साहिब जी नूं कहा गया वी तूं बागियां नूं रोटी देना, क्या मैं तेरा हाला भरना, मैं खेती करना, अपनी वाही करना, मैं कदी कोई पाप नहीं किया, कदी कोई जुर्म नहीं किया। उन्हें क्या तू रोटियां खवाना, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਿੰਨਾ, ਸਿਆਣਾ ਕਿੰਨਾ, ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਮੈਂ ਰੱਖੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੜਾਣੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਕੈਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਡੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਕੈਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭੇ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਕਾਇਦਾ ਪਰੂਫ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਅਣਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਉਡਾਵਾਂਗਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਚਰਖੜੀ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੂਜੀ ਚਰਖੜੀ, ਚਰਖੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਸ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਤੇ, ਬਲੇਡ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ,
ਉਸ ਵਕਤ